0: ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਾਂ।
1: ਖਾਣ ਪਾਣ ਪਹਿਰਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਬਸਤਰ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਦੇ ਵਿਖਿਆਤਾ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬਸਤਰ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
1: ਸਭ ਤੇ ਸੁਣ ਤਿਸ ਕੰਨਿਆ ਕਹਿਓ, ਪਾਲਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਨ ਕੋ ਲਹਿਓ।
0: ਚਾਰ ਜਣੀਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਏ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ, ਅੱਗੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚੋ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
1: ਦਾਤਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਇਕ ਰਾਮ, ਕਰੇ ਜਗਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਮ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1: ਸਭ ਦਿਨ ਸਭ ਕੋ ਭੋਗ ਭੁਗਾਵੇ, ਕਰ ਹਾਰ ਕੋ ਜੀਵਤ ਪਾਵੇ।
0: ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
1: ਸੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਲਹੇ ਮਿਨਾਸ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕਹਾਂ ਜੇਨ ਕੀ ਆਸ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਭੈਣੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਇਹੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀ ਉਪਰਿਆ, ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਾ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹਰਿਆ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਨਨ, ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੂੰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਧਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਕੀ ਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸੇ ਦਿਸ ਦੇ ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, जननी केरे उधर उदक में पिंड किया दस द्वारा दे आहार अग्न में रख है ऐसा खत्म हमारा कहन लगे जेड़ा अग विच रोटी देंदा है एवें तू कहना फलाना बंदा देंदा है अग विच जेड़ा रिजक देंदा सी ओही तेनू इत्थे रोजी पिया देंदा है कहन लगे कुम्मी जल में तन तिस बाहर कछु कुम्मी पानी विच आंडे ओदे रेते ते पए ने पंख खीर तिन नाही ना आंडिया नू खंभ ना ओना दे दुध दा प्रबंध पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखान कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कहने पत्थर दा कीड़ा पत्थर दे वेचे कोई रस्ता नहीं जिस रस्ते आपा रिजक पहुंचा सकिए देख तनिया जे पत्थर विच पैदा कीते कीड़े नू रिजक देंदा है तू बंदे दी आस ना करी देन वाला केवल एक ओही आ साहब कहिंदे ने बाणी अंदर पाखन कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जीड नाही एवें जी मेरे मना तू डरदा ना रही ए बच्ची कहिंदी नै भैणो तुसी भुलेखे विचो ये सारी सृष्टि की पालना कोई होर पिया कर दे मैं ता गुरमुखा तो बचन सुन के आई हाँ वो ता कहिंदे ने आसन लोए लोए भंडार ओदा टिकाणा हर एक लोक दे वेचे जो किछ पाया सो एक आवार कहन लगी मैं ता बचन सुने ने मां पुरुषा तो के रिजक देन वाला कोई मां बाप नहीं केवल एक वाहेगुरु है
1: राव रंक गज चीटी जोई सबको दाता त्राता सोई
0: कहन लगी देखो भेनो आ तुसी गरीब वल तको भावे मजदूरी करदा है आखर ओ कखा दी कुली विच रोटी पका के खांदा है साडा बापू ते नहीं देंदा जे कोई तनाड़ राजा रोटी खांदा है ओनू ही मालक देंदा है कहिंदी मुकदी गल की मेरे गुरु की बाणी कहिंदी है कीड़ी तो लै के हाथी तक सब दी संभाल मेरा निरंकार करदा है
1: अपर दिखे समरथ है कहां जीवन जो पाले जै कहां
0: कहन लगी किदे अंदर समरथ है ओ मेरे वाहेगुरु जी दा मुकाबला कर सके इन्हें जीवां नू कोई पाल सकदा है किसे अंदर ताकत नहीं शायद यही कारण मेरे गुरु नानक साहब जदो विस्माद भी जांदे ने ना ते एक गल कहिंदे ने दातिया मैं इस गलो हैरान ओ तेरा घर की हो जे जिस घर विच तू बैठा है उस घर दे दरवाजे की हो जाए ने जिस दरवाजे विचों तू लंघना है ते पुछया महाराज हैरानी क्यों किन्ने हैरान की तां इन्ने जीव पैदा करके सब दी संभाल करने मैनू दस तां सही तेरा घर की हो जाए जिथे एक थां ते बह के सब नू रिजक देने असी पढ़ने सो दर तेरा केहा की हो जाए तेरा दरवाजा सो घर केहा की हो जाए तेरा घर जित बह सर्द संभाले जिथे बह के तू सारिया की संभाल करने साहब जी दे ए प्यारी बच्ची कह रही है गुरु नानक दी बाणी दी कृपा नाल के सब नू रिजक मेरा दातार देंदा है कौन है जेड़ा ओदे तो बिना किसे नू रिजक दे सके
1: एम सुन कन्या सब ही कहें हमको पित प्रित पालत रहें
0: कहने एनी गल सुन के दूसरियां जेड़ियां भैणां ने ओ गुस्से विच आ गईयां कहन लगियां चुप कर जा तैनू समझ ही कोई नहीं असी नहीं जानदियां कौन है रब देण वाला सानू तां साडा बापू ही कपड़े देंदा है सानू तां साडा बाप ही खान नू देंदा है सानू तां साडा पिता ही हर प्रकार नाल संभालदा है
1: नह देखियो दे तो कित राम देओ जाए किस के कब धाम
0: अबो कहन लगियां असी नहीं देखिया कि वाहगुरु कोई है किसे दे घर भी जा के रोजी देंदा होवे कदी तके साडे घर अंदर रब आया होवे ते सानू आ के ओ रोटी दे के जावे
1: अन बस्तर सब करके त्यार किसको कौन देत किस बार
0: देख साडा बापू ता सानू कपड़े देंदा है रब ने कदी कपड़े सुवा के दिते ने साडा बापू ता अनाज लियांदा है कई तरह दे फल लियांदा है तू कहनी राम देन वाला है रब देन वाला है खुदा देन वाला है असी नहीं देखा किसी दे घर अंदर खुदा ए वस्तुआं लेके आवे
1: एम सुन के कन्या लर परी जाए पिता के टेक सुध करी
0: किन्ने आपस विच गल कर दिया कर दिया ओ इन्नी कु दृढ़ अरादे वाली है कहन लगी तर्क ना करो विश्वास करो के रिजक देन वाला वाहेगुरु है जिन्हें शरीर दिता है ओदे बचना ते भरोसा कर लवो शायद यही कारण कई वरी मनुख उस रब दी दित्ती हुई दात नू लेके असल विच मैं मेरा ढंग अपने इतिहास की विचार करन दा, जदो इतिहास की पंक्ति उत्ते गुरु की बाणी की मोर लग जाए ना ते गल पक्की हो जाती। साहब ने बाणी विच असल विच बच्चियां दे ख्याल नहीं, हर एक नास्तक मनुख की बिरती है कि रब वस्त्र देंदा है, रब सानू रिजक देंदा है, रब की साडा करन वाला है। ते मेरे साहब ने बाणी विच क्या कहन लगे, नहीं होए जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजै पवन आख है सब जाए। मेरा गुरु ग्रंथ साहब कहिंदा रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न में जिन्हें उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साठ सैन, मुख अप्याओ बैठ को देन। इन्ना कुछ लै के भी कहना कौन देन वाला है। ते मेरा गुरु अर्जन देव कहिंदा दातिया ए निर्गुण, ये तेरे गुणा नू नहीं समझता, ए निर्गुण गुण कशु ना बूझे, बख्श ले हो तो नानक सीजे। देन वाला ओ रिजक वाहगुरु वे। साहब ने बाणी विच इशारे कीते, इस पानी ते जिन तू करिया, माटी काले द्योरा करिया, उकत सुरत लै जोत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या। साहब ने बाणी विच कहा मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखण हारे, पावक सागर अथात लहर में तारो तारण हारे। साहब ने बाणी विच कहा माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है एवड दाता, जे अग्न में आहार पहुंचावे। साहब ने बाणी विच कहा और की बात कहां कह तो सो, पेट ही के पात बीच बचावे। और रिजक देन वाला एक ही लड़ पईआं ते अगो कहंदी है देखो जिन्नियां मर्जी दलीलां दे लो पर मेरे ते असर नहीं, मैं गुरमुखां तो एक बचन सुनिया है के देन वाला वाहगुरु है, कोई किसे नु रिजक नहीं देंदा।
1: हम सब कहें पिता ते खावत, एक किस बात अपर बिदतावत।
0: कहने लड़दियां लड़दियां ए आणियां उठ पईआं ते बापू दे कोल घर गईआं ते पिता बैठा सी अपने मंजे ते, ए विचारी भी पिछे पिछे तुर पई। चारा जनिया ने जाके पिता नु घेर लिया ते कहन लगियां पिता जी देखो आ किहो जिया गल्लां करदी पई है, असी बैठियां सा अज इकट्ठियां ते गल चल पई के साडा बापू सानू रिजक देंदा है, साडा पिता सानू बस्तर देंदा है, ते ए अगो होर तर्क करदी है।
1: जो प्रत पारे देत हमेश, लगतन ते जिन कीन विशेष।
0: ए तां गल्लां होर करदी है, आखदी है रिजक देन वाला कोई होर है जिदे साडे छोटे जे तन नू संभाल के रखे है ते जिदी कृपा नाल तन वड्डा हो रहा है।
1: सुख सो शुभ आहार हम करही, किसु बात की चिंतना तरही।
0: कहन लगे असी फिर दलील दित्ती के नहीं, साडी प्रतपालना साडा बाप कर दे, सुख नाल असी आहार करनिया वा, सानू किते रोटी दी चिंता नहीं।
1: ए ने माने मत कह न्यारो, हम सब कहें कीनस निर्धारो।
0: कहन लगी देखो असी सारिया ने इको ही ए आपस विच विचार कीती है के देन वाला साडा पिता है, पर एदा ता मत न्यारा है, साडी हां विच हां नहीं मिलांदी।
1: सुनत निरपत पित मूर्ख रोसा, नहीं सिर को लख्यो भरोसा।
0: कहिंदे ने कवि जी उको राजा भी मूर्ख है, ओनू ए समझ नहीं जेड़िया ए चार कहंदियां ने ए अनजान ने, जेड़ी एक कहंदी पई ओ सच कहंदी पई। कहन लगे आपस विच मूर्ख बंदा जिन्हू समझ नहीं, एक वाहगुरु ते भरोसा नहीं।
1: अपने राजमान में फूला, प्रपृत कूल पे ते फूला।
0: किन्ने अपने आ चार गज जमीन ते फुलिया बैठा है, राज गद्दी ते फुलिया बैठा है, एनू एना पता ही नहीं के देन वाला ता एक परमेश्वर है। मेनू भी रिजक ओने दिता है, राज भाग भी ओदा दिता होया है।
1: सब कन्या निज निकट हकारी, आशे समझने इच्छा तारी।
0: उस वक्त इन्हें सारिया बच्चियां नू अपने कोल बुला लिया, ए पुछन वास्ते भी इन्हां दे मन विच है की है, ए आपस विच जेड़िया गल्लां करदियां ने इकलियां, आखिर ऐस बच्ची दे मन विच की बैठा है।
1: पृथक पृथक तेन बूझन लागा, कहो तू किस को भुगते भागा।
0: कहन लगे एक एक बच्ची नू पुछन लगा के दस तू कपड़े किदे दिते पानी है, रोटी किदी दिती खानी है, तैनू दुनिया दे सुख दा साधन किन्ने दिता है, तेरे तन ते जेड़े कीमती गहने पाए ए किसने तेनू दिते हन।
1: सब ने कहो पिता हम तेरा, खावे पर है दर्ब कनेरा।
0: सारियां उच्ची आवाज विच कह लगियां, पिता जी जेड़े तन ते बस्त्र पानिया वा ए भी तेरे ने, जेड़ा आपां हथां विच गहने पाए ए भी तेरे ने, ते जेड़ा असी भोजन छकदियां वा ए भी ता तेरा बख्शा होया है।
1: ब्रिद पारत नित दे दहारा, हम सब भुगते भाग तुहारा।
0: सानू देख पिता कोई फिक्र नहीं, आराम नल घर सुतियां वा, पर साडे जागण तो पहला भोजन तैयार है। एक दिन नहीं रोज तू सानू भोजन पकवान भेजना है, साडी प्रतपालना तुसी कर दे हो।
1: निज पगनी सब ते पश्चाती, राज कोयर बोली इस भाती।
0: कहन लगे जेड़ी ओ बच्ची एक कहिंदी सी देन वाला रब, ओनू पुछया दस खां किदा दिता तू खानी है, तैनू बस्त्र कौन दिंदा है। ते परमेश्वर दे भय विच गुरु की बाणी विच भिजी हुई उस बच्ची ने ए बचन कहे हन।
1: हे पित भाग एक को दूबा, भुगत है ए नहीं कब हुआ।
0: लगी हे मेरे बापू एक गल ध्यान न सुन ले, कोई किसे दा दिता नहीं उखांदा, एक दे भाग कदी दूजा नहीं उखो सकदा। चेते रखी अपने अपने भाग सारे खांदे ने, तैनू समझ नहीं कदी वेखी के एक दा भाग एक दे मस्तक दे भाग दूजा खा ले। साहब ने बाणी विच कहे केंदने ता रब दी कृपा है, एक मां दी कुख विचो दो बच्चियां दा जन्म है, एक विचारा दिहाड़ियां करदा पिया है ते एक जेड़ा राज पदवी ते बैठा होए। भाग आपो अपने ने, सतगुरु ने बाणी विच कहा निर्धन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला न मेटी जाई। साहब ने बाणी विच कहा आपन लिया जे मिले, सब को भागत होए, कर्मा ऊपर निबड़ै जे लोचै सब कोई। बापू अपने अपने भाग खांदा हर कोई, कौन किसे नू भाग देन वाला है।
1: निज निज भाग अदक हर काट, भोगत जग में रंग सुराट।
0: ए गल वखरी के भाग हपो अपने ने, कोई 36 प्रकार दे भोजन रात नू खा के सौंदा है, ते कोई सुका प्रसादा खा के सौ जांदा है। अपने अपने भाग ने, कोई अपने तन ते खद्दर दे बस्त्र पा के सादे बस्त्र पा के जिन दिन कर लैंदा है, ते कोई एक दिन दे अंदर कई कई तरह दे बस्त्र बदलदा है। आपो अपने भाग ने, मेरे साहब ने सारे गल्लां बाणी विच कहियां ने, हजूर बचन करदे ने ना सतगुरु दे बचन। आपां पढ़ने आ कबू खाट सफेदी सवावै, कबू भूम प्यार ना पावे, ए तेरी रजा है मेरे मालक। किसे नू तू बस्त्र कीमती, किसे नू बिल्कुल मैले बस्त्र देना है। हे पिता भाग आपो अपने ने, अपने अपने भागां दा खांदे हां।
1: सुन पित क्रोध करियो और भारी, सबके सुनते गिरा उचारी।
0: सिंध ने इनी गल सुन दी देर सी, मूर्ख बापू नू समझ नहीं पई। उस धी वल अखां लाल करके ने देखिया, क्रोध नाल एदा चेहरा भखन लगा, ते इको दम थिड़कदी जबान विच ए कहन लगा है।
1: अमुक रंक हम जात मझारी, तिसके पुत्र कष्ट तन भारी।
0: ते कहन लगा तेनू कौन रिजक देंदा है। कहन लगी एक परमेश्वर एक वाहगुरु, अपने भाग खानी आ। फिर गुस्से विच आया कहिंदा चंगा जे अपने भाग तू खानी है, ए नहीं समझदी के मैं तेनू देना। ते साडी जात दे अंदर एक मनुख है जिदे पुत्र नू कोड दा रोग लगा होया है, साडी बिरादरी विच रहिंदा है, तेनू समझ पै जाए कि देण वाला कौन है। प्यारियो सिर्फ इको ही आ गल जे जेड़ी बंदे नू रब तो दूर लै जांदी। साहब ने मनमुख दी परिभाषा ही दित्ती है, देंदे थावों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए। साहब ने बाणी विच कहा दात प्यारी, विसरिया दात आरा, दात मिल गई दतार भुल गया। मैं एक खिन विचो निकलन लगा, प्रकरण मिलदा रहीम ने दो दोहरे कहे। एक नवाब सी, उन्हें थाली भर लेनी रुपया नाल सवेरे, सोने दियां मोहरां रखनिया, सारे बंदियां नू देखी जाना जदों भिखारी आने ना, ते अपनिया अखां नीवियां करके ते बुक भर के उहदी झोली विच पैसे पा देने, लोकां लंघी जाना। इन्हें कदी चेहरा तक के भिखारी वल देखिया नहीं, नीवी पाई रखनी। ते एक दिन कोई सज्जन लंघिया, ते उन्हें एक गल पुछी, कहिंदा नवाब एक गल तेरी तो मैं खुश हां, रब दा भय मनना, लोकां नू दान पुन करना, पर जदों तू किसे दी झोली विच रुपये पाना ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰਕੀਮ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੇ ਕਹਾ ਨਵਾਬ ਜੂ ਦੇਨੀ ਐਸੀ ਦੇਨ। ਹੇ ਨਵਾਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਰ ਉੱਚਾ ਬੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਣਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨੀਚੇ ਨੈਣ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੋ ਨਵਾਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਹਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਬੋਜਤ ਬੇਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣ ਹਾਰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ ਜੋ ਬੋਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਭਰਮ ਮੁਝ ਪਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੈਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੇ ਭਾਅ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਹਨ।
1: ਹਾਥ ਪਾਵ ਅੰਗਰੀ ਚੜ ਗਈ, ਅਸਕੋ ਮੈਂ ਜਬ ਤੋਹੇ ਦੇ ਦਈ।
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਚੜ ਗਏ, ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1: ਆਪਣ ਭਾਗ ਤਬ ਪੁੰਚਨ ਕਰੀਏ, ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਭਰੀਏ।
0: ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੂੰ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਂਗੀ।
1: ਸੁਣ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਪਿਤਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੋਈ ਸੀ ਸਰੀ ਮਨ ਮਾਨੀ।
0: ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏਗਾ, ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਭਾਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
1: ਇਸਕੀ ਮਾਂ ਸਬਰ ਜਿਤ ਰਹੀ ਤੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਿਸ ਕਰ ਕਹੀ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਆਖਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਹੰਕਾਰ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਾਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਾਨਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਰੋਕ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਭਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

होते परम सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन सरवन कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैया विचों पट्टां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच सरवन कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरुदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां। जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विचों एक दा किरदार एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरश कोई गुरमुख जन बैठदे ने, इह बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी है। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तों बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नूं रिजक देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उस नूं नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नूं अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नूं रिजक देण वाला परमेश्वर है। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है, जड़ा पैरन नूं बस्त्र देंदा है, खान नूं भोजन देंदा है, तन ते पाण वास्ते सुंदर गहने लैके देंदा है, ते इह खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है। पर जदों इहनूं पुछया गया तू क्यों नहीं बोलदी, ते इस बच्ची ने इक्को उत्तर दिता सी, नहीं भैणों ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਪਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈ।

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईयां ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता की आग्ञा नू सत करके अपने सिर

नानक खुशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जाए।

साबिद तुम हर जानो हो आपे, खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे खम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, अज दे इस विशेष हफ्तावारी दीवान दी हाजरी आप जी ने गुरु कृपा दे नाल भरी है और सतगुरां जी दे पावन पवित्र इलाके बचना दा कीर्तन आप जी नूं साडे अति सत्कार योग इस दर कर दे गुरु के झाड़ू बरदार गुरु के वजीर भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी भाई अमरजीत सिंह जी हजूर दी इलाही गुरबाणी नाल आपां नूं जोड़ रहे सन। आओ जो पिछले हफ्ते एक अर्ज कीती सी कि जदों भी ये दसंबर का महीना हर साल आउंदा ते ये दसंबर का महीना जे किते कोई बैराग ते टिके कोई किरदे वाला प्रचोले ते उस दे किरदे नूं उस दे अंदर नूं चंजूण के चला जांदा। आपां इस अत दी सर्दी दे महीने विच भावें हिंदुस्तान दी धरती भावें बाहर आप बैठे हो, इस अत दी सर्दी दे मौसम विच आपां घर निग माने हां, अपने बच्चियां नूं अपने माता पिता नाल अपने परिवार विच सुख आनंद नाल दिन कढ़ने हां, पर जदों किते तवारीख दे हिस्ट्री दे इतिहास दे पन्नियां नूं पलट के देखो ते अज तो 300 साल पिछे चले जाओ ते हैरानगी हुंदी है, सन 1704 दसंबर दा महीना जेड़े गुरु के सिखा उस महीने दा एक एक दिन किते तू पढ़े श्रद्धा भावना नाल ते देख गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दसवां गुरुदेव उन्हें इस महीने विच किन्नी कु वड्डी कुर्बानी सिख

नानक होशी थी सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई इराखे जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम्हार जान हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चूके सब सोग संतापे परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों अज दे इस विशेष हफ्तावारी दीवान दी हाजरी आप जी ने गुरु कृपा दे नाल भरी है और सतगुरु जी दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन आप जी नूं साडे अति सत्कार योग इस दर कर दे गुरु के झाड़ू बरदार गुरु के वजीर भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी भाई अमरजीत सिंह जी हजूर दी इलाही गुरबाणी नाल आपां नूं जोड़ रहे सन। आओ जो पिछले हफ्ते एक अर्ज कीती सी कि जदों भी ये दसंबर का महीना हर साल आउंदा ते ये दसंबर का महीना जे किते कोई बैराग ते टिके कोई किरदे वाला प्रचोले ते उस दे किरदे नू उस दे अंदर नू चंजून के चला जांदा है। आपां इस अत दी सर्दी दे महीने विच भावे हिंदुस्तान दी धरती भावे बाहर आप बैठे हो इस अत दी सर्दी दे मौसम विच आपां घर निक माने हां अपने बच्चे

अथाह अगंत अतुल ज्यो बुलाव हो त्यो नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जमी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा खौ करी बखियान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा खौ करी वखियान। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों आप जी हफ्तावारी दीवान विच सतगुरु दे पवित्र चरण स्पर्श करन वास्ते साहिबां दी प्यारी गोद विच इकत्र होए बैठे हो। जिवें आप जी नूं ए सब नूं जानकारी है कि 27 जून नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दी बरसी सी, जिस नूं आपां अज सतगुरु दे घर अंदर मना रहे हां। आपने बड़े प्यार दे नाल कीर्तन भी सरवण कीता है और गुरमुख प्यारियां तों उस दृश्य नूं तवारीख दे उस पन्ने नूं सरवण कीता जदों महाराणी जिंद कौर अपने सपुत्र दे शीश ते केस ना देख के उसने सब कुछ सह लिया अपने उते, पर इहनू ना सह सकी कि कलगी वाले दी मोर मेरे पुत्र दे सिर तो गुम हो जाए। आओ उस शेरे पंजाब दे जीवन दे समाचार तुहाडे नाल आप संगत नाल सांझे करने ने। मैं सिर्फ उन्हां दी जीवनी विचों पख उन्हां को आप नाल सांझा करना, समय अंदर रह के उस दे जीवन नूं तक के

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक विघ्न के नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

0: बरा से हर गोविंद चंद को बोलन हर बिहारे सुन चंदू चिंतायत अनक पाओ विचार चौवी।
1: वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, हफ्तावारी जो रात्रि दे विशेष दीवान सजदे ने, इस दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। आप जी ने अमृत बचना दा कीर्तन सत्कार योग भाई साहब जी खोणा पासों सरवण कीता है। दो शब्द उन्होंने कीर्तन विच असानू सरवण कराए ने। पहला शब्द सी तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवान। सहिब धन गुरु रामदास कृपालू जी का उचारण किया हुआ यह शब्द, जिस विच दातार ने उस परम पिता परमेश्वर वाहगुरु जी के गुणा नु जिथे बयान किया है, उसे एक सानू गल दृढ़ करा दिती कि मैं अपनी जिंदगी विच केवल सहारा परमात्मा दा लिया है। दुख होवे, सुख होवे, खुशी होवे, गमी होवे, मैं अपने साईं तो बिना कभी किसी अगे पुकार नहीं की। शब्द आपां सरवण कीता है, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पह करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। एक किरपालता होर गुरु रामदास जी ने कीती, कहिंदे कई बारी असी परमेश्वर दे गुणा जी जदों गल करने हैं ते कोई घटना हैरानी पैदा करने वाली वापर जाए ते असी सोचने हैं कि यह हो सकता है। मेरे धन गुरु रामदास जी ने नाल एक प्रमाण उदाहरण वजो दिता, कहिंदे ने परमेश्वर की इन्नी वडियाई है जिस बंदे नू कोई नहीं जानता, जे परमात्मा मेहर करे तो उन्हू सारी धरती का बादशाह बना सकता है। महाराज ये किवें हो सकता है? साहब कहिंदे ने हो सकता है, जो असंभव है वह संभव हो सकता है। ते नाल उदाहरण की दिती, कहन लगे देख उन्हें बकरी ते शेर नू एक थां ते बने। अज तिकड़ा कभी तके है कि बकरी ते शेर एक किले ते बजे कौन? साहब कहिंदे ने विचे धरती, विचे पानी, विच कास्ट अगन तरी जै, देख तीन हिस्सा पानी है, एक हिस्सा धरती है, ते परमात्मा ने इस धरती नू अपनी खिच दे के चार चुफेरे पानी खोण दे बावजूद टिकाया है। ए ता मानू जिवें उन्हें बकरी ते शेर दोनों टिकट से बने हुए, चार चुफेरे पानी है। आपां जदों गलोब नू तकने हैं चार चुफेरे पानी पानी सानू नजर आउंदा है, धरती का किन्ना कु हिस्सा है? साहब कहिंदे विचे धरती, विचे पानी, विच कास्ट अगन तरी जै, बकरी सिंह एक तय थाए रख है, मन हर जप भरम पाओ दूर कीजे। जे पानी विच धरती नू टिकाई बैठा है ते मना कल्पी ना जा, रब नू सिमरिया करो, तेरे भी डर जरूर दूर करेगा। दूजा शब्द गुरमुखा ने सरवण कराया कि शाम सुंदर तज नींद क्यों आई, महा मोहनी दूता लाई। शब्द विच परमाण उन्हां बड़े बैराग दे भिजे दिते। मैं इस करके अर्ज कर रहा क्योंकि आपां इह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विचों सरवण कीते ने, ते इक मैं बेनती करदे हां गुरु के सिखो, राग तां इक भांडा है। मैं कहिंदा ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜਮੁਖੀ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝੋਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਗ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਪਿਆ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਲਗਨ। ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ

योग को उपयुक्त वाले सारे दुनिया में योग जितने हैं, ये दुनिया में जितने राज आदि का जो भोग पदार्थ है सारे में समेत है, फिर आज विवेक वाली किस्त रहने वाले हैं। इस प्रकार के रामदास साहब जी का अज अवतार का दिहाड़ा है, सब संख्या में बधाई हो महाराज अवतार का आनंदी रूपे गुणते करे मेघ मेघ के वेद उचरे, जिन वेद ना ही की कारजा ना ही की कारना जो सारे सत्ता मत हो के सारे अभिशांस रूप हो के सारे का प्रकाशता हो के सारे का आशा रूप हो के विराजमान है, वो निर्गुण स्वरूप के चरण हन गए अते सरगुण स्वरूप के जिन्हे रूप धार के जिथे बाबा कैर करे पूजा आसन स्थापन होया, जिथे जाइए जलपू बाबे बाजियों खाली जाई तो घर घर बाबा गाज गए हिंदू मुसलमान जो आई, जो भी दुनिया च आई हुई स्थिति है चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है सारे घर सतगुरु जी के तारी गाया जाता है। वो चरण महाराज साहब दे जिन्हों चरणों में सरगुण स्वरूप दे जो ही पद लक्ष्मी चस्त मंज दीनानाथ जिन्हों चरणों पास बैठी बैठी बीबी कवला दासी चरण समझे बस्त भवानी जिसके चरणों में सू संसार लिया वाली माया बस रही है, वो चरण कमल जिन्हों चरणों कमलों मंज तो उजे जान करके लक्ष्मी चस रही है महा माया कांती है छाया जो ही पाल नांगे दौरे गज ही कहेरे हैं हाथी की रक्षा करने वाले जो पवित्र चरण पर घरे चक्र बैकुंठ में आए गज हस्ती के प्राण ओवारी ने हाथी ऐरा वर जो हरिहर क्षेत्र च तदुए पकड़ लिया से बचाने वास्ते जो चरण आए सन वो पवित्र चरण जो ही पाल गौतमुखी नार को सुख पे जेड़े चरण सरगुण स्वरूप गौतम की स्त्री जेड़ी सिला बनी हुई सी गौतम सती सिला मिस्त्री ए गौतम की सती स्त्री जेड़ी सी ए सिला बनी हुई सी गौतम के श्राफ करके जा पत्थर की सिला बन तेरे अंदर भी पैदा ख्याल सी इंद्र के नाल तो विचार किया ऋषि ने छड़ के वो श्राफ करके जेड़ी सजा सिला बनी हुई सी राम भगवत चरण सोहनिया गई सुर्ग पर बने बवाणा रामचंद्र के चरण सोहन सार बकुंठ में चली गई बवाणा ते चढ़ के इस प्रकार साहब सुने जी वो गौतम की जेड़ी स्त्री सी छिड़ा बनी हुई श्री रामचंद्र जी के चरणों में छो के वो कल्याण पाई सी उस वे बेमलान कहा कि महाराज मेरे बेड़ी से कि पैर ना रखियो तुसी जे चरण रखते मेरी बेड़ी ना कि जिमें अहल्या का उधार करता मेरी बेड़ी ना चली जाए स्वर्ग न तो मैं कद ना मजूरी करूं खैर जो महाराज चाह मेनू चरण धो लैन दो। इस महाने रामचंद्र ने चरण धोते पेते रामचंद्र जी रूप जिन्होंने गौतम सती सिला मिस्तरी गौतम की स्त्री जी सिला को निस्तार किया जो ही बाद गौतम की नार को क्यों स्वरूप महाराज तू क्यों जुगी आप आपे परमेश्वर है तू सरगुर क्यों जुगी आप आपे परमेश्वर होने करके तो इस प्रकार जो ही पाद है गौतम की नार को सुख पे जो ही पाद मेजकी के पाछे पे चेरे हैं जेड़े चरण साहब संगे जी मेजकी नण भगत होया क्षण भगत के पिछे चेले गोले बन के क्षण रूप हर हो के आया राणे नूरी जाई राजे के सारे रोग कटते हथ ला के क्षण भगत उस वे संतियों की रंग सवाई होने करके गया नहीं सी क्यों महाराज साहब सैन की पैज रखी सी प्रगट करे भगत वड़ियाई ओ चरण जेड़े मेजकी के पाछे पे चेरे हैं नीवी जात वाले सैन के पिछे ओ सैन का रूप धार के चेरे बन के राजे का रोग मेटे सी ओ चरण जो ही पाद मेजकी के पाछे पे चेरे हैं जो ही पाद ऋषि मुनि सब सेवक हैं जिन्हों चरणों नू ऋषि भी मुनि भी सारे सेवते हैं जोई पाद काजी ने पकड़ कर फेरे जेड़े चरण काजी ने पकड़ के ताबे च फेरे सी कि मारा मक्के वाल पैर किते है मारन कहते रब का घर है नहीं भाई तेन असी रोक देंगे उधर कर दे पैर

प्रचार किया अगे इस प्रकार तरीके चलद चलद बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी हुए।

बख्शन पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच सुभाईमान सतसंगी प्यारियो असीसां देंदे होए गुरु फतेह जी सांझ करो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडा अटुट विश्वास सिखी विच है, फिर भी जदो नाल दे धर्मां नूं वेखने हैं मन हैरान हुंदा है। उन्हां ने टीवी राही प्रेस राही जितने भी वसीले वरत सकदे सन उन्हां वरत के आपो अपने धर्म का प्रचार जेड़ा बहुत अच्छे ढंग नाल कीता है। सिर्फ थोड़े जे इशारे करने ने मैं, हालांकि उन्हां दे जेड़े मुरशिद ने गुरु ने वह बहुते कोई चंगे काम करदे नजर नहीं आते, खिमा करियो, फिर भी वह लोग अपने धर्म का प्रचार करते और घर घर उन्होंने वाड़ दी गल। शायद ही कोई बंदा होवे जिन्हों रामायण बारे ना पता होवे, शायद ही कोई बंदा होवे जिन्हों महाभारत बारे ना पता होवे, उन्हें कर दिता है सकम। लेकिन असी सिख होने दे नाते हालांकि साडे कोल सारे ही सोना पे है, इत्थे कोई किसी की पत्त बचाउंदा नजर ते आएगा लुटदा नहीं, इत्थे कोई किसी की खातर खून डोलता नजर ते आएगा पर किसी का खून पींदा नहीं, इत्थे कोई किसी की तली ते रोटी रखता नजर ते आएगा पर किसी की रोटी चुकदा नहीं। साडे कोल सोना सी, असी सोना भी नहीं बेच सके, संसार की मंडी च असी कोड़ी मुल नहीं छड़िया। मैं खुद भी उहदे विच दोषी हां, पिछले समय च सिख धर्म के प्रचारक दो ही गल्लां करदे हैं,

तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र चरणों विच सुभाईमान सतसंगी प्यारियो असीसां बख्शो अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਪਿਛਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਸੀ